खेत रहे पट पवड़िया चिड़िया हो खीस नानक नररी पाया कोड़े कोड़े टीस जो ना मंगन देना जोर जो ना राजा मल मनसोर जो ना जुगती शुक्ते संसार नानक उत्तम नीच न कोए पावन पानी अग्नि पाताल थिस विच जिया जगत के रंग करमी करमी होए विचार तिते सोहन पंच परवान खच पकाहे अते पाए तरम खंड के एहो तरम केते पवन पनीवे संतर केते कान महेश केते अखरम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते सिर बुन नाथ केते केते देवी वेश खेत अखाणी खेत बाणी खेत पात नरिंद ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड सरम खंड की बाणी रूप ताकिया गला कतिया न जाहे थिते करिए सरतम मत मन बुद्ध करम कांड की पानी जोर थिते जर महाबल सूर थिते सीतो सीता में माहे ना ओहे मरना टागे जाहे थिते पगत से खेलो सच खंड विसे निरंकार थिते खंड मंडल पड़पंड थिते लोआ लोआ आकार वेख विगसे का विचार जत पर तिर सनियार पौकला का तपताओ करिए शब्द सच्ची टकसा नानक नररी नर नहा पवन गुरु पानी पिता मत तरत महत चंगियाया बुरी आया वाचे तरम हादूर जिन्नी नाम ते आया गेम सकत काल